वेरी डिस्टर्बिंग इंसान वास्ते ओके आ तो एक वास्ते लग आ डेफिनेशन ने रिवाइज कर रहे ये कहे छे रिजेम्बलिंग समटाइम्स इट रिजेम्बल्स कहीं हतु नहीं बट इट रिजेम्बल्स तो पेन अमे जो है सीम्पल क्लासिफिकेशन एक्यूट ने क्रॉनिक से एक्यूट पेन एट्ले जो ओचिंतन मानस ने दुखाव थे एने एक्यूट पेन कहे पण मानस जो दुखाव सहन करते हो त्रण महीना उपर दुखाव त्रण महीनाथी वधारे जो एने होय अने सहन कर्यो होय और ही गोज टू द हॉस्पिटल आफ्टर 3 मंथ्स इट इज टर्म्ड एज क्रॉनिक पेन इट इज लॉन्ग टर्म पेन बीजू क्लासिफिकेशन कोज उपर से कई है एक है

0: teaser.com।
1: कुरान की दास्तान, आए देखते।
2: हम मोहम्मद को खरीद लेंगे।
1: ये बात है उस वक्त की जब मक्का के बड़े बड़े सरदार खुद रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आए।
2: ऐ मोहम्मद, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते बल्कि समझौता करना चाहते हैं।
1: चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमकती उम्मीद, मगर दिलों में एक मक्कार मंसूबा।
2: आज हम मोहम्मद को अपने जाल में फंसा ही लेंगे।
1: क्या पेशकश थी?
2: ताकत, इज्जत, दौलत, सब आपके कदमों में, बस जरा सा समझौता।
1: लेकिन सच्चा ईमान कभी

0: करता, और ये बात रसूल खूब जानते थे। ये बात है सूरह काफिरून।
1: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ।
0: हम सब के घर, गाड़ियों और ऑफिस में अक्सर चारों कुल की तस्वीर जरूर मौजूद होती है। ये चारों सूरे बहुत छोटे छोटे हैं, जिनमें से एक सूरा सूरह काफिरून है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा इस सूरे का मतलब क्या है? अल्लाह ने ये सूरा नाजिल क्यों किया? क्या है इस सूरे के नाजिल होने के पीछे की कहानी? और सबसे बड़ी बात, आज 1400 साल के बाद हमारी जिंदगी में इस सूरे का क्या फायदा? ये वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपके सवालों के जवाब मिल सके।
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون।
0: मक्का उस वक्त गुमराही के अंधेरों में डूबा हुआ था। इंसान खुद ही अपने हाथों से बुतों को बनाता और उसी के सामने खुद ही सजदा करता। ऐसे वक्त में एक आवाज उठी,
2: قولوا لا اله الا الله تفلحوا, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे।
0: यह आवाज थी नबी करीम की, रहमत की, उम्मीद की और अदल व इंसाफ की आवाज। मगर अंधेरों के सौदागर घबरा गए। रसूल की इस आवाज ने बहुत से बुत परस्तों को यकता परस्त बना दिया।
3: ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आपने खुदा को तोड़ रहे हो?
4: ये मेरा खुदा नहीं है, मैं तो मोहम्मद के खुदा पर ईमान ले आया हूँ।
0: मक्का के सरदारों ने ईमान लाने वालों पर जुल्म करना शुरू किया। उन पर कोड़े बरसाए, उनके सीनों पर पत्थर रखे, उनके जिस्मों को आग से दहका दिया।
3: या तू मोहम्मद का दीन छोड़ेगा या मैं तेरी जान निकाल लूंगा।
0: हर जुल्म, हर कोशिश नाकाम हो गई तो कबीले के सरदारों ने एक तरकीब निकाली।
5: हमने हर तरह का जुल्म कर लिया लेकिन मोहम्मद का दीन तो फैलता ही जा रहा है।
6: हमारी सारी तरकीबें बेकार हो गईं, अब एक ही रास्ता है, हम मोहम्मद को पैसे और लड़कियों के जरिए खरीद लेंगे।
0: सरदारों ने रसूलुल्लाह को पैसों से खरीदना चाहा, मगर रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया उससे सरदारों का चेहरा उतर कर रह गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज लाकर रख दो तब भी मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा। मगर इस बार सरदारों ने एक चाल चली।
5: मेरे ख्याल से हमें समझौता कर लेना चाहिए।
3: क्या बकवास कर रहे हो? हम समझौता कर लें? हरगिज नहीं।
5: इसी समझौते से हम मोहम्मद को अपने जाल में फंसाएंगे।
7: हम आपसे लड़ना नहीं चाहते बल्कि समझौता करना चाहते हैं। अगर आप हमारी पेशकश मान लें तो झगड़ा खत्म हो सकता है। एक साल आप हमारे खुदाओं की पूजा कर लीजिए, अगले साल हम आपके खुदा की पूजा कर लेंगे, इस तरह झगड़ा खत्म हो जाएगा।
0: रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसका शरीक बनाऊं। ये कहकर रसूल चले गए।
5: मोहम्मद तो जवाब दिए बिना ही चले गए। हो सकता है कुछ गौर व फिक्र करके बाद में जवाब दें। मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए।
0: असल में रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से वही का इंतजार था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जवाब आ गया।
7: बहुत वक्त ले लिया आपने। खैर, आपने हमारी पेशकश के बारे में क्या सोचा?
0: सोचना क्या था, रसूलुल्लाह ने वही जवाब दोहरा दिया जो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ था, और वो जवाब था सूरह काफिरून।
2: मेरे हबीब, کہہ دو کہ اے کافرو

0: तुम जिनको पूछते हो मैं उन्हें नहीं पूछता, और जिसे मैं पूछता हूं उसे तुम नहीं पूछते। तुम्हारे लिए अपना दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है।
1: रसूल के इस जवाब ने सरदारों को बिल्कुल नाउम्मीद करके रख दिया।
2: आपने अच्छा नहीं किया, हम तो आपसे समझौता करने आए थे, आपने तो हमें काफर बना दिया।
1: ये कोई मामूली जवाब नहीं था, बल्कि शिर्क और तौहीद के दरमियान ऐसी लकीर थी जिसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। ये थी सूरह काफिरून के नाजिल होने की दास्तान। इस सूरह के नाजिल होने से एक बात तो साफ हो गई कि तौहीद और शिर्क में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि 1400 साल पहले नाजिल हुए इस सूरह का हमारी जिंदगी में क्या असर है? आज भी कुफ्र शिर्क के बड़े बड़े सरदार वही तारीख दोहरा रहे हैं, मुसलमानों को पेशकश देते हैं पैसों की, औरतों की, और कभी कभी मौत की धमकियों से डराते हैं। ऐसे हालात में कमज़ोर ईमान वाले समझौता कर लेते हैं, डर जाते हैं, लेकिन सूरह काफिरून जिसके दिल में बस जाती है वो कभी पीछे नहीं हटता, न पैसों से बिकता है और ना ही धमकियों से डरता है। जिसके दिल में कुरान होता है वो ये साबित कर देता है कि जिस तरह रसूलुल्लाह पूरे मक्का वालों के सामने नहीं हारे, उसी तरह हम भी हार मानने वाले नहीं। दिखा देंगे दुनिया को कि शिर्क और तौहीद में कभी समझौता नहीं हो सकता। अब जब भी सूरह काफिरून की तिलावत करें तो याद रखें, चाहे कोई कितना ही लालच क्यों ना दे, धमकियाँ दें, लेकिन अपने उसूल और अपने अकायद से पीछे नहीं हटना है। यही है सूरह काफिरून का पैगाम। तो ये थी सूरह काफिरून के नाजिल होने के पीछे की दास्तान। अगले सूरह की दास्तान जानने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।